0: निशान पर क्लिक करने से हो सकता है नोट वाला पेज खुले।
1: ऐसे में मंदजबाला से मुत्तफिक मुंतखब करके बाएं जानब वाले तीर के निशान पर क्लिक करने से खुलने वाले फॉर्म में आपने अपना निकनेम, अपना ईमेल एड्रेस और पैगाम लिखना है। इन मालूमात को पूर करके पैगाम लिखने पर सवाल सामने आएगा कि क्या आप कोई वीडियो या तस्वीर भी भेजना चाहते हैं या सिर्फ तहरीरी पैगाम है।
0: अगर सिर्फ तहरीरी पैगाम भेजना है तो नहीं वाला ऑप्शन मुंतखब करके तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो पैगाम हो जाएगा तरसील।
2: हम आप सब की जानिब से ढेरों ढेर पैगाम के मुंतजर हैं।
0: सामिन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
3: ये NHK World जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
2: अच्छा वसीमा, थाना बता कि पर्चियों तंजाकू के हवाले से मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग किस किस्म की तमन्ना करते होंगे।
0: बड़ी प्यारी प्यारी बातें। कई बच्चे लिखते हैं पेशवर फुटबॉल खिलाड़ी बनना है, बेसबॉल खिलाड़ी बनना है, इम्तिहान में कामयाबी का भी लोग सोचते हैं। वैसे अरे फुटबॉल से मुझे याद आया, जापान की टीम हाल ही में मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद वापस आई है।
1: क्या याद दिला दिया, गुज़श्ता दिनों ह्यूस्टन स्टेडियम में दुनिया के 18वीं नंबर की जापान फुटबॉल टीम का मुकाबला 6वें नंबर के ब्राज़ील से था। 1-1 में 2 गोल से शिकस्त के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाली वाहिद एशियाई टीम यानी जापान टूर्नामेंट से बाहर आ गई।
2: जी, जापान अगरचे हार गया लेकिन खिलाड़ियों ने मुकाबला खूब किया। खास तौर पर जापानी गोलकीपर सुजुकी ज़ायोन हिम्मत से डटा रहा।
0: और अब पूरी जापानी कौम के बिल्कुल वैसे ही जज्बात हैं खदीजा, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं तुम जीतो या हारो
2: हमें तुमसे प्यार है।
1: इस प्यार से मुझे एक बार फिर ताना बाता याद आ गया। मैंने सुना है कि तंजाकू रूमानवी तमन्नाएं, तालीमी मैदान या रोजगार की तरक्की, सेहत, खानदान या बच्चों की कामयाबी जैसी कई किस्म की ख्वाहिशात इन पे लिखी होती हैं।
0: जी जी, और एक नई बात यह कि ताना बाता होता जा रहा है डिजिटल।
1: क्या मतलब, ऑनलाइन ताना बाता?
2: वो भी कह सकते हैं वैसे। दरअसल एक दिलचस्प और जदीद रुझान ताना बाता ख्वाहिशात के डिजिटलाइजेशन का है। जापान के आजकल के ताना बाता त्योहारों में से एक आंजो ताना बाता फेस्टिवल ने डिजिटल तंजाकू यानी ख्वाहिश पर्चियां मुतारिफ करवाई हैं।
0: अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब। कागज पर ख्वाहिशात नहीं लिखनी, लोग स्मार्टफोन पर या डिजिटल डिस्प्ले के जरिए अपनी ख्वाहिशात जमा करा सकते हैं।
1: अच्छा, इसमें तो काफी ज्यादा लोगों की शिरकत मुमकिन हो जाती होगी और कागज का ज़िया भी कम होता होगा। यानी जापानियों ने इस फेस्टिवल को माहौल दोस्त बना दिया। अरे वाह
0: वाह वाह वाह वाह, अब क्या करें, प्रोग्राम के आखिर की तरफ चलें या कोई और ताना बाता की बात करती जाऊं? मैं अपने मोहल्ले की बात सुनाती हूं। हमारे घर के बिल्कुल पास है टोक्यो टावर, उसमें बड़ी सजावट हुई है ताना बाता के हवाले से। उसकी अच्छा। रोशनियां ऐसी हैं जैसे कहकशां लगी हो। और वहां इन दिनों में, ताना बाता के दिनों में, शॉपिंग करने के लिए आने वाली खवातीन ने किमोनो पहना होगा, युकाता पहना होगा, तो उनको डिस्काउंट भी मिलना।
1: हम भी कुछ कर सकते हैं, मैं ख्याल में जाना पड़ेगा,
2: हम खुद ही लटक जाएंगे, इतना बड़ा तो है।
0: पर बड़ा सजा हुआ है, बड़ी रोशनियां हैं। तो चलें, अब क्या करें, इजाजत लेने का वक्त तो आन पहुंचा है, लेकिन इजाजत लेने से पहले सामिन को बताते चलते हैं कि जापानी बोलचाल के प्रोग्राम आइए जापानी बोलें का क्विज जापानी जुबानदानी अब शुरू हो चुका है।
1: आप हमारे होम पेज nhk.jp/urdu के तवस्सुत से इसमें शिरकत कर सकते हैं और इसी होम पेज के तवस्सुत से ईमेल रवाना कर सकते हैं। आप इसके जरिए प्रोग्राम सुनने के अलावा अपनी आरा भी रवाना कर सकते हैं। तो होम पेज है nhk.jp/urdu।
2: जी, होम पेज nhk.jp/urdu पर सबसे नीचे मालूमात की सुर्खी तले एक लिंक है जिसका उन्वान है हम आपकी आरा के मुंतजर हैं। इस्तेमाल की शराइत मंजूर होने की सूरत में हिदायत पर अमल करते हुए पैगाम रवाना कर दीजिए।
0: जी सामिन, तहरीरी पैगाम भिजवाएं, ऑडियो पैगाम भिजवाएं, वीडियो पैगाम भिजवाएं, हम मुंतजर हैं। अब NHK वर्ल्ड जापान के मेजबानों को इजाजत दीजिए।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानों का कोनिच्चिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को कामायनी सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिच्चिवा। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब।
0: कामायनी जी, जुलाई आते ही कई जगहों पर तानाबाता त्योहार की सजावट दिखने लगती है ना?
1: अरे हाँ, 7 जुलाई को तो तानाबाता यानी तारों का त्योहार है। इस दिन 2 तारों को मिलने दिया जाता है और वो भी साल में एक बार।
0: जी,
1: रात को लोग आसमान में तारों को निहारते दिख जाएंगे आपको।
0: और देखिए, इस दिन बांस की टहनियों से सजावट की जाती है और उन्हें कागज के सितारों, लड़ियों आदि से सजाया जाता है। लोग रंग बिरंगे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं और बांस की टहनियों से बांध देते हैं।
1: हाँ, ये तो है। तो क्या आपने अपनी मनोकामना लिखकर टांग दी है?
0: भाई, मेरी तो यही कामना है कि पूरे विश्व में जो संघर्ष लड़ाइयाँ जारी हैं वो सब खत्म हो और लोग सुख शांति से जीवन बसर कर सकें।
1: जी,
0: क्योंकि देखिए, दुनिया में कहीं भी अशांति हो तो उसका असर सभी पर पड़ता है, चाहे आपके यहाँ ना भी हो।
1: मैं भी सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। किसी ने ठीक ही कहा है कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन एक बार सेहत खराब हो जाए तो आप सारी परेशानियां भूल जाते हैं और सारा ध्यान केवल अपने स्वास्थ्य पर लगा देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा जिसने भी कहा। और देखिए, सुख, चैन, अमन, शांति, सेहत, यही कामना की जाए।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे गत सप्ताह जापान के प्रधानमंत्री ने भारत यात्रा की थी, तो ये भी कामना है कि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छुएं, आदान प्रदान बढ़े और लोगों के बीच प्यार स्नेह बढ़े।
0: अरे, वो तो बढ़ता दिख ही रहा है। देखिए, आपको याद है हमने श्रोताओं की मुलाकात करवाई थी मीनाक्षी मियोको जी से, जिन्होंने अहमदाबाद में योगासन चैंपियनशिप जीती थी।
1: हाँ, बिल्कुल याद है, उन्हें स्वर्ण पदक मिला था ना। हाँ, उनके साथ बातचीत सच में दिलचस्प रही। देखिए, योग में उनकी रुचि उन्हें किस मुकाम पर ले गई।
0: मैंने तो जिंदगी में कभी योगा नहीं किया, लेकिन इस साल कंधा जाम होने पर पहली बार योग किया और काफी राहत मिली।
1: बहुत अच्छा।
0: तो अब मैं लोगों को इसकी सिफारिश कर सकती हूँ कि ये काफी कारगर हो सकता है।
1: चलिए, ये सुनकर मुझे भी प्रेरणा मिल रही है। लेकिन आपने अभी मियोको जी का जिक्र किया था, तो किस बारे में किया था?
0: दरअसल उस अंक पर पथिक जैन जी का पत्र आया है और वो लिखते हैं कि प्रथम विश्व योग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक की मीनाक्षी जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। जापान भारत के कितना निकट है योग में, जापान ने दिखा दिया। भारत जापान की ये मित्रता गहरी और गहरी हो, शुभकामनाएं।
1: देखिए, पथिक जी भी भारत जापान के अच्छे संबंधों के लिए कामना कर रहे हैं।
0: जी
1: जी पथिक जी, बहुत आभार आपकी टिप्पणी के लिए। मियोको जी ने पूरी श्रद्धा से योग सीखा है और उसे आत्मसात कर लिया है, तो ये काफी प्रभावित करने वाली बात है ना।
0: जी, और दोनों देशों के संबंधों की बात की जाए तो देखते हैं इस बार ताकाइची जी की यात्रा के क्या परिणाम सामने आते हैं। इस बार भी गुवाहाटी का दौरा रद्द हो गया। पहले भी एक बार रद्द हो चुका है, जब पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो जी जाने वाले थे। तो अगली बार उम्मीद है वहां जाने का ताकाइची प्रधानमंत्री को मौका मिलेगा।
1: और अब देखिए, अगला पत्र है सुरेश अग्रवाल जी का किसिंगा ओडिशा से।
0: अच्छा।
1: लिखते हैं, 21 जून को चेरी के देश से कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व योग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता जापानी योग साधिका मीनाक्षी मियोको से परिचय एवं संवाद का अवसर प्राप्त कर अत्यंत गौरव की अनुभूति हुई। योग और भारत के प्रति उनकी गहरी आस्था एवं आत्मीयता का परिचायक ये तथ्य है कि उन्होंने स्वयं एक भारतीय नाम को अपनाया है। ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर योग की महत्ता को आज संपूर्ण विश्व न केवल समझ रहा है बल्कि उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग भी बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपकी ये प्रस्तुति योग की वैश्विक स्वीकार्यता और इसकी सांस्कृतिक शक्ति को सार्थक रूप से अभिव्यक्त करती है। इस प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद।
0: सुरेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मियोको जी ने जिस लगन और निष्ठा से योग को अपने जीवन में स्वीकार किया है वो काबिले तारीफ है। दुनिया भर में लोग योग कर रहे हैं और कमायनी जी इसके तो इतने सारे प्रकार हो गए ना कि अब पता ही नहीं चलता कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है।
1: अभी मैं इंटरनेट पर पढ़ रही थी कि योग का व्यापार बहुत विशाल रूप ले रहा है।
0: अच्छा,
1: वैसे तो एक चटाई बिछाकर आरामदायक कपड़ों में योग आसानी से किया जा सकता है, लेकिन आजकल खास योगा मैट्स, योगा पैंट्स और योगा लेगिंग्स और ना जाने क्या क्या है, सबका कारोबार बहुत फल फूल रहा है।
0: बताइए, व्यापारी कारोबारी अफसर तलाश ही लेते हैं, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कितनी धूम है योग की।
1: सच में, तभी तो कारोबारी अवसर हैं इसमें।
0: जी जी जी, बिल्कुल। अब देखिए, पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से प्रदीप बसाक जी ने भी मीनाक्षी जी का जिक्र किया है। लिखते हैं, विश्व योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मियोको के साथ बातचीत ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी। मीनाक्षी मियोको ने अपने अनुभवों को जिस सहजता और आत्मविश्वास के साथ साझा किया, वो वास्तव में प्रेरणादायक था। उनकी सफलता की कहानी ये बताती है कि जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपने संघर्ष, कठिन परिश्रम और उपलब्धियों के बारे में जो बातें बताई, वो प्रत्येक श्रोता के लिए मूल्यवान सीख है। उनकी बातों से ये स्पष्ट हुआ कि योग केवल एक खेल या प्रतियोगिता नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का एक सशक्त माध्यम है।
1: बात तो सही है, इतना परिश्रम किया है तभी उसका फल भी मीठा है।
0: जी हाँ, और आगे प्रदीप जी लिखते हैं कि विश्व स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने न केवल अपने देश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनी है। उनकी उपलब्धियां ये संदेश देती हैं कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करे, तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम चूमती है। कार्यक्रम सुनते समय मुझे बार बार ये महसूस हुआ कि सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। मीनाक्षी मियोको के अनुभवों ने यह विश्वास और भी मजबूत किया कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। ऐसे उत्कृष्ट और प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए मैं कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आशा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक कार्यक्रम सुनने को मिलते रहेंगे।
1: वाह वाह प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सटीक आंकलन किया है मीनाक्षी मियोको जी के प्रयासों का। मुझे लगता है कि बिना किसी फल की इच्छा किए अगर आप बस अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करते जाएं और आपका लक्ष्य अगर केवल अपने आप को और बेहतर बनाना हो, तो कामयाबी आपको मिल ही जाएगी।
0: जी हाँ, और अब समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, आपको याद होगा ना कि कुछ सप्ताह पहले हमने AI के बारे में बात की थी कि ये किस प्रकार हमारे जीवन में गहराई से प्रवेश कर चुका है।
0: जी बिल्कुल याद है, ऐसा कोई दिन ही नहीं होता जब हम इससे जुड़ी कोई सेवा का इस्तेमाल ना करते हो या इससे जुड़ी कोई खबर ना पढ़ते हो। आए दिन कोई ना कोई उन्नति हो ही रही है ना AI के क्षेत्र में।
1: दुनिया के तमाम देश AI की दौड़ में है ताकि पीछे ना छूट जाएं। हर जगह डेटा सेंटर खोलने के लिए निवेश हो रहा है,
0: और आने वाले समय में अगर AI में महारत हासिल नहीं की तो लगता है कि इस युग में जीना ही मुश्किल हो जाएगा।
1: इसी सिलसिले में हमारी वेबसाइट पर एक श्रृंखला मौजूद है जिसका शीर्षक है प्रभाव, जलवायु संग बदलती दुनिया। इसमें वैज्ञानिक जानकारी और नवीनतम निष्कर्षों के आधार पर संभावित समाधान सुझाने की कोशिश की गई है। इसकी दो कड़ियों के बारे में श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे। एक है डेटा सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में नई तेजी। डेटा सेंटर हमारे डिजिटल युग के इंजन तो हैं, लेकिन भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जबरदस्त बढ़ोतरी कर रहे हैं। इनसे वैश्विक कनेक्टिविटी तो मजबूत हो रही है, लेकिन जलवायु जोखिम भी बढ़ रहा है।
0: जी हाँ, एक और कड़ी है, खाद्य कचरा बढ़ाए वैश्विक तापमान। खाद्य कचरा वैश्विक तापमान वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। एक संस्था ने चेतावनी दी है कि भारत और रूस जैसे देशों से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जिसमें मीथेन गैस का उत्सर्जन खाद्य कचरे से होता है। इस अंक में इसी समस्या से जुड़ी जानकारी की पड़ताल की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी और पृथ्वीवासियों के अस्तित्व से जुड़ा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, तो वेबसाइट पर इन वीडियोस को जरूर देखें ताकि हम भी एक जिम्मेदार और जागरूक पृथ्वीवासी के रूप में अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सकें।
1: वैसे वायला जी, डेटा सेंटरों से बिजली की खपत तो ज्यादा होती ही है, साथ में पानी भी इन्हें बेतहाशा चाहिए होता
0: है। जी हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में।
1: जी जी जी, इसीलिए कई जगहों पर इसके निर्माण का विरोध किया जा रहा है।
0: एक तरफ तो सहूलियत है और एक तरफ प्राकृतिक संसाधनों का विनाश, तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालने की बेहद जरूरत है ना।
1: जी जी। और अब बढ़ते हैं पत्रों की ओर और लेते हैं आरा बिहार से राम कुमार नीरज जी का पत्र।
0: ओके।
1: लिखते हैं, रेडियो जापान हिंदी सेवा के वेबसाइट पर प्रकाशित गर्मी में ठंडे शैम्पू से राहत देते हेयर सलून शीर्षक रिपोर्ट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक छोटी लेकिन अत्यंत रोचक और सकारात्मक खबर है। आज जापान और दुनिया के अनेक देश भी भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
0: हाँ, और इस बार तो देखिए यूरोप में भयंकर गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है ना। मृतकों की संख्या भी हजारों में बताई जा रही है।
1: जी जी, तो राम कुमार जी कहते हैं कि ऐसे समय में यामागाता प्रीफेक्चर के हेयर सलूनों द्वारा ग्राहकों को ठंडे शैम्पू और बर्फीले पानी से राहत पहुंचाने की पहल वास्तव में सराहनीय है। ये केवल एक व्यावसायिक सेवा नहीं बल्कि ग्राहकों के आराम और संतुष्टि के प्रति विशेष ध्यान का उदाहरण भी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 300 हेयर सलून इस सेवा में शामिल हैं। इससे ये पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर शुरू की गई एक छोटी पहल किस प्रकार एक लोकप्रिय परंपरा का रूप ले सकती है। विशेष रूप से ये जानकर दिलचस्प लगा कि ओनुमा कोइची ने लगभग 20 वर्ष पहले इस अनोखी सेवा की शुरुआत की थी। किसी नए विचार को लंबे समय तक बनाए रखना और उसे लोकप्रिय बनाना आसान कार्य नहीं होता। मुझे भी अच्छा लगा कि सेवा में ग्राहकों के अनुरोध पर सिर पर कसी हुई बर्फ भी छिड़की जाती है। ये जापानी लोगों की सूक्ष्मता और सेवा भावना को दर्शाता है।
0: वाकई बिल्कुल अनोखी सेवा है, गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल रहने का अच्छा तरीका है, मगर मैं खुद इसे करवाऊं इतनी तो मेरे में हिम्मत नहीं है।
1: और आगे लिखते हैं कि भारत जैसे गर्म देशों में भी ऐसी अवधारणाएं लोगों को आकर्षित कर सकती हैं। संभव है कि भविष्य में हमारे यहाँ के सलून भी ग्राहकों को गर्मी से राहत देने के लिए कुछ इसी प्रकार का प्रयोग करें। हालांकि रिपोर्ट में ये भी बताया जा सकता था कि ठंडे शैम्पू के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी कोई सावधानी आवश्यक है या नहीं। कुछ लोगों को अत्यधिक ठंडे पानी या मेंथॉल उत्पादों से असुविधा हो सकती है। यदि इस पहलू का भी संक्षिप्त उल्लेख होता तो रिपोर्ट और अधिक उपयोगी बन सकती थी। कुल मिलाकर ये समाचार जापान की नवाचार क्षमता, ग्राहक सेवा संस्कृति और बदलते मौसम के अनुरूप जीवन शैली में किए जा रहे छोटे छोटे प्रयोगों की सुंदर झलक प्रस्तुत करता है। ऐसी सकारात्मक और मानवीय खबरें समाचार जगत में ताजगी का अनुभव कराती हैं। रेडियो जापान हिंदी सेवा को इस रोचक रिपोर्ट के लिए धन्यवाद।
0: हाँ, ये खबर पढ़कर मुझे भी लगा कि इतना ठंडा करना चाहिए क्या सिर को, लेकिन पता नहीं ग्राहक क्या सोचते हैं। भाई अगर विदेशों से भी लोग आ रहे हैं तो शायद कुछ अनोखा देखने करने का जुनून तो है। मेंथॉल का शैम्पू तो मेरे लिए चल सकता है, और हो सकता है कि जो लोग बाहर खुले में काम करते हो ना, उनको ये पसंद आता हो।
1: हाँ, हमारे यहाँ एक गीत है ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, उसी तरह ठंडे ठंडे शैम्पू से नहाना चाहिए।
0: बिल्कुल। बस गर्मी को दूर रखें और बाकी सब भूल जाए, है ना।
1: जी, जी, जी।
0: अच्छा कमाईनी जी, तब देखिए फेसबुक पर एक श्रोता की टिप्पणी आई है एक खबर पर, और ये खबर बड़ी मजेदार है कि जापान के एक शोध दल ने पाया है कि पैदल चलने के लिए सबसे अनुकूल शहरों में रहने वाले लोग कम पैदल अनुकूल इलाकों के लोगों की तुलना में लगभग दुगने कदम चलते हैं। शोध दल ने यह भी पाया कि पैदल चलने की दूरी पर सुपरमार्केट और रेस्तरां का होना तथा पैदल चलने के अनुकूल सड़कें लोगों को अधिक चलने के लिए प्रेरित करती दिखी। वैसे जापान में चलने का राष्ट्रीय औसत 6,138 कदम रहा।
1: हाँ, जापान में चलना तो आपको बहुत बहुत पड़ता है, लेकिन आप किस जगह रहते हैं उसके हिसाब से कदम संख्या में फर्क बहुत दिलचस्प है।
0: हाँ, और इस खबर पर देखिए अरुण कुमार जैन जी ने टिप्पणी की है कि जापान के शहर पैदल चलने वालों के लिए स्वर्ग हैं। 2009 में ओसाका और कोबे में इस बारे में मेरे अद्भुत अनुभव है। जायका कोबे से नजदीकी रेलवे स्टेशन तथा आसपास के क्षेत्रों में पैदल चलने का अनुभव बेहद अच्छा रहा। दूसरे देशों की तरह जापान में पैदल चलने के स्थानों पर रुकावटें नहीं थीं।
1: अरुण जी, अपना सुझाव साझा करने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, जापान में विदेशी पर्यटक भी जब आते हैं तो कहते हैं कि दिन में आसानी से 10,000 से 20,000 कदम तो हो ही जाते हैं।
0: हाँ, ये तो है।
1: हाँ, ये यही बताता है कि पैदल चलने वालों के लिए कितनी सुविधा है।
0: जी हाँ, ये तो है।
1: और वायला जी, अब चलते चलते हम भी पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अंत में, तो आज क्यों ना कोई गीत सुन लिया जाए।

0: दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
1: और कामायनी सिंह को
0: सायोनारा, नमस्कार।